ਸੋ ਇਸੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਇਹ ਮਾਨਸ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਈ ਐਮ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗ, ਮੈਂ ਮਾਨਸ ਹਾਂ, ਬਟ ਕਬੀਰ ਸੇਸ ਨਾ ਇਹ ਮਾਨਸ, ਇਹ ਤੇ ਮਾਨਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਖੜੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਈਫ ਕਰੰਟ ਹੈ ਵਿਚ ਇਸ ਮੇਕਿੰਗ ਇਟ ਹੈਪਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਮਾਨਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੀਦਰ ਇਟਸ ਮੇਲ ਨੋਰ ਇਟਸ ਫੀਮੇਲ, ਨਾ ਇਹ ਮਾਨਸ। ਆਫਟਰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦ ਟਰੂ ਸੈਲਫ ਕਬੀਰ ਸੇਜ਼, ਨਾ ਇਹ ਮਾਨਸ, ਨਾ ਇਹ ਦੇਵ, ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਜਤੀ ਕਹਾਵੇ ਸੇ ਉਹ ਕਈ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਲੇਬਲ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਤੀ ਹਾਂ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹ ਜਤੀ ਕਹਾਵੇ ਸੇ ਉਹ, ਨਾ ਇਹ ਜੋਗੀ, ਨਾ ਔਧੂਤਾ, ਨਾ ਇਸ ਮਾਏ, ਨਾ ਕਹੂ ਪੂਤਾ, ਮੇਰੇ ਟਰੂ ਸੈਲਫ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਮਾਏ, ਨਾ ਕਹੂ ਪੂਤਾ, ਜੋ ਕੁਸਚਨ ਮੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਹੈਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਰੇਜ਼ਡ ਦੈਟ ਕੁਸਚਨ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਵੇਅਰ ਡਜ਼ ਇਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਵਿਦ ਇਨ ਦ ਬਾਡੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ, ਇਸ ਮਿਸਟਰੀ ਲਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਆ ਮੰਦਰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਵਸਾਈ, ਇਹ ਆ ਮੰਦਰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਵਸਾਈ, ਇਸ ਮੰਦਰ ਚ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਸ ਵਾਰ ਐਸ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਵਸੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਇਆ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਗੈਲੈਕਸੀਸ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲੇ ਅਪਰੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਸੁਰਤੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਉਹ ਬਾਡੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਚ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵੰਡਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੰਦਰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਵਸਾਈ, ਇਹ ਮੰਦਰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਵਸਾਈ, ਤੰਗ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਕੋ ਪਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਗ੍ਰਹੀ ਨਾ ਉਦਾਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਰੀਅਲ ਸੈਲਫ ਨਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦਾਸੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਗ੍ਰਹੀ ਨਾ ਉਦਾਸੀ, ਨਾ ਇਹ ਰਾਜ ਨਾ ਭੀਖ ਮੰਗਾਸੀ, ਨਾ ਇਹ ਰਾਜਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਭਿੱਖ ਮੰਗਾ ਬੈਗਰ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨਾ ਰੱਖ ਤੂੰ ਰਾਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਹਿਊਮਨ ਫਾਰਮ, ਆਈ ਐਮ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗ, ਸਮ ਪੀਪਲ ਸੇ ਦੈਟ, ਇਫ ਵੀ ਆਸਕ ਵਾਟ ਆਰ ਯੂ, ਦੇ ਵਿਲ ਸੇ ਆਈ ਐਮ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗ, ਪਰ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ, ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਨੀਦਰ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਏ ਬਾਡੀ ਨੋਰ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬਲੱਡ, ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨਾ ਰੱਖ ਤੂੰ ਰਾਤੀ, ਨਾ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾ ਇਹ ਖਾਤੀ, ਨਾ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਲੇਬਲ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਫਾਲਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਨਟਰੂ, ਇਲੂਜਨ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਸਭਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਭਨਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਨਾ ਇਹ ਖਾਤੀ, ਨਾ ਇਹ ਤਪਾ ਕਹਾਵੇ ਸ਼ੇਖ,
ना ए कोई तपा है, ना ए शेख है, ना ए जीवे ना मरता देख, ना ए जींदा है ते ना ही इसनु किसी ने मरता देखा है, वो आप ही जानता फिर वो की है, उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, वो मिस्ट्री ऑफ द मिस्ट्रीज है, उस मिस्ट्री को जान नहीं सकते। कहते ना ए जीवे ना मरता देख, इस मरते को जे कोई रोवे, कहते जो कोई बंदा मर जाता ना तो वह सोचते हैं कि यह मर गया, कहते उन्होंने नहीं पता कि जो चीज पहला जिंदा सी वह हूं भी उतना ही जिंदा है, सिर्फ जड़ा मकान सी वह टह गया है, पर मकान दे विच रहन वाला होर मकान चले जाएगा, जो होर मकान चले जाएगा, मकान बदलिया जाएगा, लेकिन मकान जो जिंदा सी कहते रो क्यों रहे हो, रो क्यों रहे हो, तो हूं भी जिंदा है उतना ही, किसी और मकान चोएगा ना। ए जीवे ना मरता देख, इस मरते को जे कोई रोवे, जो रोवे अपनी पत खोवे, कहते वो अपनी पत खोदा है, तो वो रोई जा रहा है कि वो मर गया पर वो जिंदा है, वो तो उसे तो हासो ही नहीं होनी है, जो रोवे सोई पत खोवे। अखीर कबीर साहब कहते हैं गुरु प्रसाद मैं डगरों पाया, फिर गुरु की गल आ जाती है कि गुरु की कृपा दे नाल ए राज ए रस्ता मैनू प्राप्त होया, क्योंकि गुरु नू पता है मैं की हां, और गुरु ही ए सीक्रेट रिवील कर सकता है, और गुरु ही इस सीक्रेट नू रिवील करने दे दरम्यान जड़े जड़े ऑब्स्टैकल्स हैं, जड़ियां मुश्किलातां हैं, उन्हां नू टैकल कर सकता है। कहिंदे हन गुर प्रसाद मैं डगरों पाया, गुरु की कृपा दे नाल कहिंदे ए अपना रियल सैल्फ रियलाइज करन तो बाद की हो गया, जन्म मरण दो मिटवाए, जन्म मरण मेरे दोनों खत्म हो गए, क्योंकि रियल सेल्फ ना जमदा है ना मरदा है। जितनी देर तक मैं अपने आप नूं शरीर समझदा हां, शरीर दिया इच्छावां हन, वासनावां हन, तृष्णावां हन, मोह ममता है, उतनी देर तक मैं आंदा हां और जाना हां। जदों रियल सेल्फ असल आपा चीनिया गया, असल आपा पहचानिया गया, कहिंदे जन्म मरण दो मिटवाया, फौरन कहिंदे मेरा जन्म मरण खत्म हो गया। तो अखीर च आखदे हन कहो कबीर ए राम की अंश, ए उस प्रभु दी ही अंश है, जिस तरह समुद्र दे विचों निकालिया होया एक पानी दा ड्रॉप समुद्र दा ही हिस्सा है, इसे तरह ए साडे शरीरां दे विच अकाल पुरख वाहिगुरु दी सुपर कॉन्शियसनेस दा एक ड्रॉप है, लेकिन जिसनू इस शरीर दे विच आन करके एक वहम हो गया कि मैं आ हां, जदों इस वहम नू तोड़ दिता जाएगा उदों ए जो है जिस दा है ओ ही बन जाएगा, अते उसे दिया तमाम क्वालिटीज जो हैं वो इस दे विच आके मौजूद हो जाएंगियां। आज दे कीर्तन दे विच आप जी की सेवा च ए अर्ज कीती है, क्योंकि गुरु अर्जन देव जी का गुरपुरब मनाना सी, ते जिस रेफ जिस लड़ी च कीर्तन चल रहा सी उसे लड़ी च ही इस नूं मैं पेश करना चाहता सी कि गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपना सैल्फ रियल सैल्फ डिस्कवर करन तो बाद अपनी बाणी आप उचारी है, उस बाणी दे विचों ही पता लगता है कि जो अपना रियल सेल्फ डिस्कवर कर लेंदा है ना वो मर सकता है, ना उसनू पेन दिती जा सकती है, ना उसनू खत्म कीता जा सकता है, ना उसकी कोई जात है, ना वो आउण जाण वाली चीज है। ओ गुरु अर्जन देव जी महाराज अपनी अकम्पलिशमेंट नू कह रहे हैं कि मैं तन भागी हां कि गुरु ने मेरे उत्ते कृपा की है, मैनू मेरा भरम दूर कर दिता है और मैनू दस दिता है कि मैं की हां। और गुरबाणी का मुख आशा टारगेट सिर्फ यही है कि असा भी अपनी लाइफ दे विच विच वाहिगुरु कृपा करे, ये जानना है कि असी कौन। अज आप जी गुरु अर्जन देव जी का गुरपुर मना रहे हो तो गुरु अर्जन देव जी का एक सुनेहा लैके जाओ, गुरु अर्जन देव जी सानू सारिया नू एक साडे अंदर क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, क्वेश्चन उठा रहे हैं, वो क्वेश्चन ये है सुनो रे तू कौन कहां ते आयो। इंसान सुन तू कौन है, तेन पता है कितों आया है, तेन पता है तेन कुछ नहीं पता, इस क्वेश्चन नू इतना बधाना चाहिदा है अंदर, दिन रात इस उते मेडिटेट करना चाहिदा है, दिन दे विच कितनी दफा इस थॉट नू लेना चाहिदा है कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। जो ये सवाल रेस करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, पहला तो सवाल परिपक्व होना चाहिदा है,
जब सवाल परपक हो जाएगा कि मैनू पता ही नहीं मैं कौन हाँ, उदो बहुत तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी। मैनू यह नहीं पता कि मैं कौन हाँ, तो बाकी तो सारे का सारा कुछ व्यर्थ हो जाता है ना, अर्थहीन हो जाता है। जो यही ना पता हो कि मैं कौन हाँ, जे ये नहीं मैनू पता कि मैं कौन हाँ, तो फिर जो मेरे नाल दे आले दुआले दे हैं उन्हां दा मैनू की पता लग सकता है कि यह कौन हैं, फिर उत्थे मैं किवें कह सकदा कि आ मेरा आ है, आ मेरा आ है, आ मेरा आ है, जब मैनू ही नहीं पता कि मैं कौन हाँ। इस सवाल नू इतना बधाना चाहिदा है कि एक दिन तकलीफ बन जाए और उस दा हल लभण दे वास्ते फिर इंसान उसनू ढूंढदा है जिसनू इस सवाल दा पता है, जवाब पता है, जवाब उसे नूं ही पता है जिसने सानू बनाया। उही अकाल पुरख वाहिगुरु गुरु दे रूप दे विच आके सारे दा सारा कारज फिर ओ आप करदा है। तो इस तों एक सिट्टा ए निकलदा है कि अगर असी अपने सैल्फ नूं जानना चाहने हां तो फिर सानू गुरु धारण दी जरूरत है, गुरु वाले होण दी जरूरत है। असी अपने आप नूं सारे सवाल पुछिए कि किस की असी अपने जीवन दे विच ए जिज्ञासा दे नाल गुरु महाराज जी नूं गुरु धारण कीता है, अपने आप नूं सरेंडर कीता है, अपने आप नूं गुरु दे चरणां च हैंड ओवर कीता है कि आ मैं हां। जब हम शरण प्रभु की आई राख प्रभु पावे मार, आप जी दी इच्छा है मैनू जिंदा रखो, मैनू मारो, मैनू जो भी मर्जी बना दो, जो भी मेरा मर्जी करो, ओ मन अर्पी सब तन अर्पी अर्पी सब देसा, मैं अपना सारा कुछ, अपना मन, अपना तन, अपना धन, अपना सब कुछ अर्पण करन नूं तैयार हां, पर मेरे ते तरस करो कि मैनू ए दसो गुरचरण लाग हम बिनता पूछत कह जी उपाया। ए जी कौ उपाया है, किवें उपाया गया है, कौन है, है? कवन काज जग उपजे बिन से कहो मोहे समझाया। ए गुरुदेव मैनू समझाओ ए कौन है, ए क्यों आंदा है, क्यों जांदा है, क्यों जमदा है, क्यों मरदा है। जदों गुरुदेव कृपा करके ए समझा दिंदे हन, उस दे टंग हन, उस दीआं विधियां हन जिन्हां दी अगले कीर्तना च विचार कीती जाएगी कि किवें किवें समझांदे हन। ते उदों जाके जदों समझ आ जांदी है उदों आ अवस्था बन जांदी है कि नानक गुर खोए परम पंगा हम ओए मिल होए एक रंगा। हुण गुरु अर्जन देव जी कहिंदे हन मैं ते परमात्मा एक हो गए हां, दो नहीं रह गए। असीं हाले गल नहीं कह सकते, दम नाल नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि साडे अंदर हैजिटेशन आएगी कि हाउ कैन आई बी गॉड, मैं तो एक छोटा जिहा हाँ, सिनफुल हाँ, कुकर्मी हाँ। महाराज जी कहते जिस दिन अपने रियल सैल्फ नू लभ लोगे ना, कहते उन्हूं को पाप लगता ही नहीं है, उत्थे पाप है ही नहीं, पाप उनका उस लेप ना लगे, ये उपर उपर उपर उपर दिया तहां हैं। लेकिन जो असली तुसी हो उत्थे पाप लगता ही नहीं है, वह पापी हो ही नहीं सकता, वह परमात्मा है, उसनू पाप किवें लग सकता है। इस करके कहते हैं ना ब्रह्म ज्ञानी ना पुन लगता है ना पाप लगता है, ਉਦੋਂ ਚ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਤਨੇ ਤਸੀਹੇ ਤਾਂ ਸਹਾਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬੁਲੰਦ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮੇਰੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤਕਲੀਫ ਚ ਉਹ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰੀ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਖੀ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਨੰਦ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਗ੍ਰਹੀ ਸੋਦਾਸ ਉਦਾਸੀ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਪਛਾਣੇ, ਉਹੀ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹੀ ਉਦਾਸੀ ਉਦਾਸੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਡੇਰੇ ਡੂਰੇ ਤੇ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ

मैं तेरे दर्दा भिखारी हां मंगता हां। आरता मैंने मंगता जिथे आरता का अर्थ दुखी है उथे इसका अर्थ मंगता भी है। भगत तन्ना जी शब्द आरंभ करते हुए कहते ने गोपाल गो मैंने पृथ्वी पाल मैंने पालना करने वाला सर्वशक्तिवान।

अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है वाहे गुरु। अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत।

अचल अविनाशी सिमरन सोई पुरख अचल अविनाशी जिस मृत दुर्मत मलनासी सतगुर चरण कमल रित धारण गुर अर्जन गुण सहज विचारण गुरु रामदास का क्यों प्रगा

राग बिलावल महला पंजवां धूप दे घर अठवां। मैं ना ही प्रभ सब कुछ तेरा, आई एम नथिंग ओ गॉड एवरीथिंग इज योर्स। ईग है निर्गुण उग है सरगुण, केल करत विच स्वामी मेरा। In this world, you are the absolute, formless Lord. In the world hereafter, you are the related Lord of form. You play it both ways. Nagar mein aap, bahar pun aapan, prab mere ko sagal basera. You exist within the city and beyond it as well. Oh my God, you are everywhere. Aape hi rajan, आपे ही राया, कह कह ठाकुर कह कह चेरा। यू योरसेल्फ आर द किंग एंड यू योरसेल्फ आर द सब्जेक्ट। इन वन प्लेस यू आर द लॉर्ड एंड मास्टर एंड इन अनदर प्लेस यू आर द डिसाइपल। काको दुराओ कास्यो बलबंचा, जह जह पेखो तह तह नेरा। फ्रॉम होम शुड आई हाइड, whom should I try to deceive? Wherever I look, I see you near at hand. Saad murat gur petyo nanak, mil sagar bund nahi anheera. O Nanak, I have met with Guru, the embodiment of holy saints. Like the drop of water merges into the ocean, it cannot be distinguished as separate again. Main nahi prab sab kuch tera. The Shabad is composed in Rag Emily Bilawal. It's a combination of Rag Yaman and Rag Bilawal. And the Taal is Panjtaal Di Swari, 15 beats.

गुरु प्यारियो, आप जी ने हुने हुने ही गुरबाणी का आनंद मानिया है। असि आप जी का ध्यान एक जरूरी गल वाल दिवाना चाहते हुए बेनती करते हां कि जे आप जी घर विच परिवार विच ते बच्चे नाल गल बात पंजाबी विच करते हो ता आप धनता जो हो, जे कुछ कसर है ता अज तो इस पासे खास ध्यान दियो। बच्चियां पास पंजाबी विच गल बात करन दा समा केवल घर विच ही है, स्कूल विच, दोस्तां विच, घर दे नौकरां चाकरां नाल ता इह समा उहनां नूं मिल ही नहीं सकदा। जरा सोचो, जे बच्चे पंजाबी बोल ते समझ नहीं सकनगे ता गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करना ते समझना ता इक पासे रिहा, ओह गुरुद्वारे जाके की लाभ प्राप्त कर सकनगे? गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी नाल संबंध किवें जोड़नगे? अपना जन्म किवें सफल कर सकनगे? हो सकदा है आप जी ने इस पासे कदी ध्यान ना दिता होवे, असी ता उस दाते दा सुनेहा आप पास पहुंचा रहे हां। जे कुछ उनताई है ता ध्यान दियो ते ओ पूरी करो। आप जितनिया वद तो वद जवाना बच्चियां नूं पढ़ाओ अच्छा है, पर पंजाबी ता सिखी दा मुढ अथवा फर्स्ट स्टेप है, सिखी दा तुरा है। एक अंग्रेज मुदब्बर ने ठीक ही ता कहा सी कि जिस कौम नूं कमजोर करना होवे उसकी बोली खो लवो, पर असी ता अपने पैरां ते आप ही कुहाड़ा मार रहे हां। जदो गुरु नानक देव जी दा प्रकाश होया ता मुगल राज दा समा सी, हिंदी जनता कमजोर ते निटार हो चुकी सी। महाराज जी ने इस कौम घातक वातावरण नूं पाब कीता ते बाणी विच फरमाया, घर घर मियां सबना जियां बोली अवर तुम्हारी। ए हिंदी जनता नूं हलूणा सी कि तुसी अपना धर्म ईमान छड़ के मलेच्छां दियां मर्यादा अपना के घर घर मियां बने होए हो ते अपनी बोली भी त्याग दित्ती है। सो गुरु प्यारियो, अपना फर्ज पछाणो, केवल अपना घर ही नहीं बल्कि अपने होर सज्जना मित्रां नूं भी इह सुनेहा दे के गुरु दियां खुशियां प्राप्त करो।

आप जी ने बड़े प्यार दे नाल शरण कीता है। सिंह यूथ वाले सिंह पहुंचे ने तो साहिब गुरु कलगीधर पातशाह जी दी बाणी दे नाल तो सारे का प्यार है, पर इन्हों का कुछ ज्यादा ही है। इस वास्ते इन्होंने हुक्म किया है कि तुसीं जरूर ही साहिब गुरु कलगीधर पातशाह जी तराना अखीर ते समाप्ति जड़ी है वह साहिब गुरु गोबिंद सिंह दी बाणी दे नाल ही करनी है। साडे मन विच ख्याल जरूर सी कि सतगुरां पातशाह जी का जो तराने हन जां गुलदस्ते आप जी ने अगे कई बार सरवण किया है तो सतसनी तराने दे नाल समाप्ति करांगे। आओ एक प्रार्थना रचना होर है जो आड़ा चुताला दी है, आओ वो आप जी बड़े प्यार नाल सरवण करो। शब्द कबीर साहब जी का है, आप जी नूं बंदिश का आनंद जरूर आएगा। इस राग का नाम लच्छा प्रदीप की राग है जो बड़ा ही पुरातन बड़ा ही पुराना राग है। तो पुरातन बंदिश है, बड़े प्यार नाल सरवण करो।

आब मोहे नाच नो ना आवे, मेरा मन मंदरिया ना बजावे। ये पावन शब्द सरवण कीता है। आओ एक जो के ज्ञानी ज्ञान सिंह अलमस साहब जी की बहुत ही सुंदर रचना जो आप जी ने पंथ विच बहुत ही गायन की है, जो उन्हां दी सब तो पहली हरमन प्यारी जिथे भी कीर्तन करते सन वह रचना संगत विच जरूर सुनाते सन, ते बड़ी कठिन है। आप जी ओदी लिखतकारी ते बंदिश की बनावट आओ अड़ाना बहार की बंदिश है श्रवण करनी कि किस तरह धूम परी जगत में तुमरी। ये आम नहीं किते भी गाई, पहली बारी जा किते किते इस बंदिश असा ने गाई है, तो ध्यान देना ये रचना पहला आप श्रवण करो, बोल जो बड़े औखे ने। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की शिफत की है, ध्यान देना ब्रिज भाषा की ते संस्कृत की चीज है, ध्यान देना। धूम परी जगत में तुमरी, महाबली भीम कंप्यो थर हरे गदा त्याग, चक्रत पयो डंका बजयो रणजीत पे जब ही, घना नाना नाना कर शब्द प्रगट पयो। इस उन्होंने कंपोजिशन बनिया है, ध्यान देना। इस चीज इन्नी औखी पढ़न औखी है, पर इस उन्होंने बंदिश का स्वरूप दिता है, बड़ा आनंददायक चीज है, ध्यान सरवण करना। धूम परी जगत में तुमरी, महाबली भीम कंप्यो थर हरे गदा त्याग, चक्रत पयो डंका बजयो रणजीत पे जब ही, घना नाना नाना कर शब्द प्रगट पयो, कंप्यो तरणी तर, कंप्यो तरणी तर धरती कंब गई, कंप्यो तरणी तर थारा रारा रारा कर इंद्रपुरी, धूम परी जगत में तुमरी। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी आनंदपुर जय जयकार हो रही है, सारे पासे तुम पै गई, इंद्र का दरबार ते वड्डे वड्डे भीम जेड़े द्वापर युग दे विच बड़े बड़े बली सन वह भी कंब गए, गदातार वड्डे वड्डे भीम वर्गे अर्जुन वर्गे सारे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की शिफ तो सलाहन देख के उपरों धरती कंबण लग पी, आकाश कंबण लग पिया। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की इन्नी चढ़त है। तो अगला पैरा बड़ा सुंदर है, ध्यान देना। तीर पातशाह दे किस तरह चलते ने, शाना नाना नाना नाना शनक शोम कार, शाना नाना नाना नाना शनक शोम कार, छडत तीर कलगी तर, शाना नाना नाना नाना शनक शोम कार, छडत तीर कलगी तर, सरा रारा सर के जावत तीर, सरा रारा सर के जावत तीर, छतियां चीर दुष्ट सबन के तरफ तरफ निकसे प्राण, धागे रघुबीर महावीर रण तीर की गिरत पगरी, धूम परी जगत में तुमरी। तीसरा पैरा बड़ा सुंदर है, ध्यान देना। चक्र चलत खंड खंड रुंड मुंड कर, खंडा खड़ग तुपक तबर महा जोद दुष्ट दमन करे। चक्र न्यांग सिंह धमाले ते चक्र पाउंदे हन, ते जदों रण मैदान च लोड़ पैंदी है शास्त्रां दी, ते जदों उह आखरी शास्त्र धमाले तो ला के ते चक्कर मार के सिर ला दिंदे सन। चक्र चलत खंड खंड चक्कर चल रहे ने, चक्र चलत खंड खंड रुंड मुंड कर, खंडा खड़ग तुपक तबर महा जुद दुष्ट दमन करे, गंधर्व अलमस्त के प्रभु की जग धूम परी, डरत पई शिवपुरी पेख आनंदपुरी। ब्रह्मपुरी शिवपुरी इंद्रपुरी सारे देवत्या दी पुरिया हैरान हो गई, तो डरन लग पिया आनंदपुरी देख के। तो ओ ये रचना बड़े आनंद दे नाल प्यार दे नाल साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उस्तत अलमस्त साहब जी की रचना।

जी, गुरु जी बड़े मर्दे मर्द खुदा थे, बड़े आवदो जाहदो पार सा थे, गनी थे नबी थे, बड़े मुकदा थे गाजी थे, दलावर थे वो खैरे शोभा थे, करवाने की मर्ज की वो आले दवा थे, देखने के गुरु गोविंद सिंह थे लेकिन जाहरे खुदा थे। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जाहरे खुदा। ना सरो मनसूर गुरु गोबिंद सिंह, एज दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह, हक रा गंजूर गुरु गोबिंद सिंह। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे विच सारे गुण सन। विद्वान ने बड़ा सुंदर लिखा है, नैण तो नशीले, सतगुरु पातशाह जी दे नैण तो नशीले, मसतीले दो जादू परे, नैण तो नशीले मसतीले दो जादू परे, तनक निहार सब सुरत पलात है, तनक मात्र, तनक निहार सब सुरत पलात है, पलकन के तीर करे दैंतन फकीर शाह, रंकन पे दया कर तख्त बिठात है, पलकन के तीर करे दैंतन फकीर शाह, रंकन पे दया कर तख्त बिठात है, एक हाथ माला और दूसरे पे तेग शुभ है, एक हाथ माला और दूसरे पे तेग शुभ है, भक्ति और वीरता की गर्दन चुकात है, फतेह चाड़े आंगन और लक्ष्मी दबाए पग, गोबिंद मरगिंद गुर जीते नहीं जात है। धन गुरु गोबिंद सिंह मरगिंद की तरह शेर की तरह सतगुरु पातशाह जी कदी भी रण मैदान च हारे नहीं है, सतगुरु पातशाह हमेशा जित हुई। तो सत संगत जी, औरंगजेब का ऐलान होया कि मेरे कन्ना विच इन्हां सिखां दी ढोलकी ते चिमटे की आवाज, ते ये जेड़े सत श्री अकाल दे जकारे छड़दे ने, इन्हां नूं जरा चेतावनी कर दिओ, अपने सिपाहियां नूं कह दिता कि दस दिओ कि मेरे कन्ना विच ये ढोलकी चिमटे की आवाज ना पवे, मेरे कन्ना विच ये जेड़े जकारे छड़दे ने सत श्री अकाल दे इन्हां दी आवाज ना पवे। तो कुछ मसंदा ने आके सतगुरु पातशाह चरणां ते बेनती कीती, महाराज बड़ी डर वाली गल है, बड़ा एक अनोखा चैलेंज औरंगजेब दा होया है, सतगुरु आपां लड़ाई झगड़े विचों की लैणा है, ते किरपा करो कि आपां एक भोरा पुट लईए, आप जी नूं असीं मशवरा दिंदे हां। सारे कट्ठे होके मशवरा देण लगे सतगुरु पातशाह जी, ध्यान देना, सारे कट्ठे होके मशवरा देण लगे, कहिंदे सतगुरु पातशाह जी गरीब नवाज जी ये किरपा करो कि आपां एक भोरा पुट लईए, उस भोरे विच बैठ के आपां ये आस्ता आस्ता हौली हौली पाठ करा करांगे, आस्ता आस्ता बाणी पढ़ लिया करांगे, ते हौली हौली ढोलकी बजाया करांगे, ते उत्थे जकारे छड़ लिया करांगे भोरे विच ही बैठ के, ते आपां की लैणा है लड़ाई झगड़े चो। ते सतगुरु पातशाह जी हस पे, कहिंदे ने तुसां ते ये मन विच ठान लई है, मन विच विचार कर लई है, पर सतगुरु पातशाह कहिंदे मेरे मन विच जो फुरना है वह भी जरा शरवण करो। सतगुरु पातशाह कहिंदे उन्हें यह ऐलान कर दिता है कि मेरे कन्ना विच ढोलकी की आवाज ना पवे, नगारा मर दो। सतगुरु पातशाह कहिंदे नगारे ते चोट मारो, नगारे ते चोटा वजन, ते सिंह चढ़दी कला विच जकारे छड़न। ते सतगुरु पातशाह कहिंदे तुसीं भोरे की गल करदे हो, असीं कहिंदे हां खालसे का जिहड़ा निशान है उच्ची पहाड़ी ते चुल्ले, दूरों दूरों पता लगे कि आनंदपुर साहब का यह लोहगढ़ का किला है, ये आनंदपुर साहब की पावन धरती है, गुरु कलगीधर पातशाह विराजमान हैं। तो साध संगत जी, सतगुरु पातशाह कहिंदे गुरसिखो, तो सतगुरु पातशाह कहिंदे आ बोल नगारे ते वजने चाहिए ने, ये जेड़े बोल है धमाकेदार जोरदार वजनदार शक्तिशाली, ये जदों वजणगे नगारे ते देखो फिर ओदे कन्ना विच जदों गूंजा पैणगे तो पता लगेगा। तो सत श्री गुरु कलगीधर पातशाह जी इन्ने अणख, सतगुरु पातशाह जी इन्नी जुरत, इन्नी शक्तिशाली वीरता दे पुंज सतगुरु पातशाह गुरु कलगीधर पातशाह जी तो उचारण कर रहे तराना सत्यान देना। दागड़ दी धर्म दिगतांग दागड़ दी दिम धरना, दागड़ दी दे दे ताल कागड़ दी कुम करना, दागड़ दी दे दे ताल कागड़ दी कुम करना, बागड़ दी ब्रिकते बांग तागड़ दी तोम तोम तरना, तदर दानी दानी तुम दानी तदर तुम धिरना। अखीर ते सतगुरु पातशाह कहिंदे धीम ते धरना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਿੱਤਰ ਵੀਣਾ ਤੇ ਸਤਾਰ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ।

क्योंकि अमृत वेला है। तो अमृत वेले जाके पहला काम ही ये करना है कि कार स्नान सेवन करो। स्नान भी हो गया, सिमरन भी कर लिया,

चले। ले मर्दाने तू साडे बस्तर पर असी वही नदी विच इशनान कर। मर्दाने ने बस्तर पकड़े हजूर वही नदी विच प्रवेश करते हैं, चुभी मारते हैं, पर पैरी सास संगत बाहर नहीं निकले आंखों से। बाबे ने ऐसी चुभी मारी, मर्दाना बड़ा चिर उड़ीकदा रहे। पातशाह हुण बाहर आउंदे हैं, हुण पानी विचों बाहर निकलते, पर हजूर निकले। मर्दाना नदी दे कंडे ते कदे इधर भज्जा जांदा है, बाबा किधर गए हो, कदे इधर भज्जा। दिन चढ़ गया, अजे भी बाबा बाहर नहीं आया। गहरी सास संगत बेबे नानकी नू जाके लोकां ने कहा, धन गुरु नानक पातशाह जी दे प्यार वाले ने जाके कहा, बेबे तेरे वीर ने वही नदी भी चुभी मारी है, बाहर नहीं आया। प्रेमी तो अखा विचो पानी बहा रहे, जिन्हां दे अंदर गुरु नानक दा प्यार सी उन्हां दे अखां विचो तो प्यार दे आंसू जा रहे हैं। पर जो लोग नुक्ताचीन सन, नास्तिक सन, उन्होंने कहा गुरु नानक डूब गया आखो सी। दौलत खान हिसाब किताब करना सी मोदी खाने का, मोदी खाना गरीबा लुटा दिता है। इस भाई जराम भी बड़ी उदासी, पर बेबे नानकी ने कहा तुसी उदास ना हो। नानकी तलवंडी तो नाल लेके आया सा नानक नो, मैं ते कालू ने कहा सी जयराम इस नो किसी कम लाओ, मोदी खाना ले दिता। और आज पता नहीं की होया, बेबे ने कहा नहीं तुसी उदास ना हो, मेरा वीर कदे डूब नहीं सकता, वो तो डूबिया उतारने वास्ते आया। किसी महापुरुष ने लिखे चंद्रमा की मिसाल दिती है गुरु दी, भी चंद्रमा की करदा है ते गुरु की करदा है। तो लिखे कालू

श्री लक्ष्मण आशा जी दीवान लगा के कीर्तन भी समाप्ति है। उस उपरांत अरदास गुरु के हुक्मनामे ए मर्यादा उदास ने बेनती की सी भी आज दी चाह सेवक वालों तो मैं की सेवा कर सकता हाँ तो जो तुसी प्यार दिता है और ये भी गुरु की प्रेरणा से तो उस संसार अज चाह दा लंगर तैयार है। और मैं तो भी बेनती की कई प्रेमी कह लगे भाई जी साडा भी सब पा आखो श्री भाई कई प्रेमी ते नाल उन्होंने कहा भी साडा नाम ना लई ते असी भी जिना जिना ते गुरु ने मेहर की सेवका नाल हित किया है तो उन्होंने चाह का लंगर तैयार किया है। तो हम प्यारी साध संगत सारे प्यार नाल क्योंकि अज आसा दीवार का कीर्तन भी पूरा हो गया तो मैं चाहूंगा अखीरला छंद अज आसा राग विच आसा राग तो आओ अखीरला ये छंद है अज आसा जी दीवार दे कीर्तन का भोग पै रहा है सर्व आसा पूर्णी आसा जी दीवार तो ये छंद आपां आसा राग च लगाओ।

0: सत्संग जी सेवक इथे आए हैं संगतां दा अत्यंत प्यार तो नाल ज्ञानी बलदेव सिंह जी मेरे बरखुरदार भी हैं ते ज्ञानी भी हैं महापुरुष भी हैं क्योंकि गुरु घर दी सेवा जो करदे हैं इन्हां ने भी बड़ा प्यार कीता है करना बनदा भी है क्यों के बाबा जी दे संगी फिर निकटवर्ती संगी हैं तो बड़ा प्यार कीता है मैं अरदास करदा हां गुरु इन्हां नूं चढ़दियां कलां आप जी दी सेवा विच इन्हां नूं पूरा मान गुरु बख्शे तो अज भी जो चाह दा प्रोग्राम है ज्ञानी जी ने काफी सहयोग दिता है तो ए भी इन्हां दा प्यार है हुण अरदास होवेगी तो मैं बेनती करांगा भी गुरु साहब अपने सुख स्थान ते पहुंचा के तो कोई भी माई भाई जान दी खेचल ना करे सारिया ने सेवकां दी ए सेवा प्रवान करनी आस करदा हां बेनती प्रवान करोगे आओ अरदास भी जुड़ो.
1: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

प्यारे गुरुदेव जी, सच्चे पातशाह सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, आप जी अपने इस पवित्र शब्द दे विच ये विचार बख्श रहे हैं, जप हो ता एको नामा, अकाल पुरख वाहिगुरु का नाम जपो, जे नाम नहीं जपते अवर निराफल काम, बाकी सारे काम निराफल और फ्रूटलैस हैं, उन्हां दा कोई भी फल नहीं है जे नाम नहीं जपते। इस करके दो पंक्तियां मैं आप जी दे सामने अर्ज कीतियां हैं। एक, नाम बिना नरक कहीं ना लेख है। नाम तो बिना इंसान किसे कम दा नहीं है, किसे कम दा नहीं, किसे लेखे च नहीं। और दूसरी, नाम बिना सूना घर बार, नाम तो बिना ये शरीर रूप जो कर है ये बिल्कुल सुन्ना है, और इस दे जो गुण हन इस काया रूपी कर दे, वो नाम नु भुलाउण दे नाल हर बिसर तेरे गुण गले। महाराज जी ने ते बाणी च ये भी आख्या है,

काम इस देही दे अंदर है, जब यही तेरे ऑर्डर च नहीं है, डिसिप्लिन दे विच नहीं है और यही अंदरों गली पई है, तो फिर नाम तू किवें प्राप्त करेगा? नंबर वन, देही नू सोध, देही नू काढ़, इस नू डिसिप्लिन दे विच लिया। देही तंग बहुत करती है। तो बाबा फरीद जी नू पुछया, महाराज आप जी ने की कीता? क्योंकि देही बहुत किस्म दी आवाजा मार दी, कदे कुछ चाहती है, कदे कुछ चाहती है, कदे कुछ चाहती है, क्योंकि इस दी आदतां, इस दे टेस्ट्स, इस दे सुभा रस, जेते रस शरीर के तेते लगे दुख, पर बड़े किस्म दे रस हन जिन्हां दे नाल असी अपनी जो देही नू कमजोर बनाने हैं, इस नू खराब करते जाने हैं। और इस ते अगर कोई बंदा मास्टरी नहीं करता तो यह बड़ी आलसी हो जाती है, बड़ी वीक हो जाती है, आलसी हो जाती है, इस तो ज्यादा मेहनत नहीं होती, फिर थक जाती है। कहते हैं इस देही नू सोध, इस दे नाल थोड़ा टफ हो। फरीद साहब आखते हैं

अपने विचार अस्वारी कीजे। कहिंदे हुण तुसी अपने विचारां दे विच खोए पए हो, उन्हां नालों सैपरेट नहीं हो, विचार अते तुसी एक में खोए पए। विचार आंदा है तुसी उस दे विच रल जांदे। पर इत्थे टेक्निक ये दसी जा रही है कि अपने विचार अस्वारी कीजे, तुसी अलग हो जाओ विटनेस करन वाले, अपने आप नूं सेपरेट कर लो, स्पेक्टेटर बन जाओ अते जो विचार है उन्हां दे उत्ते सवार हो जाओ। दैट यू कीप आई ऑन योर एवरी सिंगल थॉट द मिनट इट क्रीप्स इन एंड व्हाट इट डज इनसाइड यू, फॉर हाउ लॉन्ग इट स्टेज इनसाइड यू एंड देन हाउ द सेकंड थॉट इज फॉलोड बाय। कहते ट्राई टू सी द होल प्रोसेस ऑफ थॉट्स कमिंग एंड गोइंग। अपने विचार अस्वारी कीजे, स्नान करके चौंकड़ा लगा के एकांत दे विच बैठ जाओ अते फिर अपने अंदर, जिस तरह सी बाहर कोई तुरिया फिरदा है उसनू देख सकते हैं, ख्याल भी तो अंदर तुरिया ही फिरदा है ना, ख्याल भी अंदर तुरिया ही फिरदा है। जिस तरह अपने मकान च कोई तुरिया फिरदा है, असी अलग चेयर ते बैठ के सिर्फ उसनू वाच कर सकते हैं। टेलीविजन दे उत्ते तस्वीरां चल फिर रही हैं, तुर फिर रही हैं, असी अलग चेयर दे उत्ते बैठ जाने हैं ते उसे उन्हें देखते हैं। इस तरह महसूस करो कि देर इज अ ड्रामा ऑफ थॉट्स इज गोइंग ऑन एंड यू आर नॉट पार्ट ऑफ इट, यू आर जस्ट विटनेसिंग। अपने विचार असवारी कीजिए, अपने विचारां दे उत्ते असवारी करो, भाव के उन्हां नूं इनडिफरेंट होके, उन्हां नालों अलग होके जस्ट वॉच दैम। सो पहली चीज तुसी की अचीव कीती है कि यू एंड थॉट हैव बिकम टू डिफरेंट थिंग्स, यू हैव टोटली डिसकनेक्टेड यूअर सेल्फ फ्रॉम द थॉट्स। तुसी अपने आप नूं थॉट्स तो अलग कर ले, अपने विचार असवारी कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता की होएगा कि थॉट्स का ट्रैफिक आ रहा है, तुसी सिर्फ देख रहे हो कि थॉट आ रहा है, ना उस लई बुरा ख्याल बनाना, क्योंकि ख्याल बनाओगे तो ख्याल च उलझ जाओगे, ना उस लई चंगा ख्याल बनाना, कोई ओपिनियन नहीं फॉर्म करनी, थिंकिंग नहीं करनी, जस्ट प्लेनली वाच देम। सिर्फ उन्होंने देखना है। अपने विचार असवारी कीजे दा मतलब है कि अलग होके सिर्फ उन्होंने देखो, तुसी कोशिश करके करन दी देखो कल तो सवेर तो, और फिर जदों भी वक्त मिले इस अभ्यास नूं करना है। अपने विचार असवारी कीजिए, थॉट्स तो अलग होके सिर्फ उन्हां दा जो फ्लो है उसनूं देखना है। जदों तुसी देखोगे, थॉट्स नूं देखोगे, क्योंकि तुसी थॉट दे नाल कोऑपरेट नहीं कर रहे, उस दे विच एनर्जी नहीं पा रहे, उस दे नाल ज्वाइन इन नहीं कर रहे, इस करके वो थॉट जो है उत्थे अपने आप ही सीज हो जाएगा। थॉट नीड्स योर कोऑपरेशन एंड योर टोटल इन्वॉल्वमेंट, तां थॉट जो है वो स्प्रेड हुंदा है, वधदा है, अगां वधदा है। जे तुसी उस दे नाल ही न रले तो थॉट उत्थे सीज होना शुरू हो जाएगा, और उस तो बाद तुसी देखोगे कि विद इन सैकेंड्स एक होर थॉट आना शुरू होया। बट इन बिटवीन फर्स्ट थॉट एंड सैकेंड थॉट यू विल फाइंड ए वेरी स्मॉल गैप, फ्यू सैकेंड्स का गैप, अते उस गैप के विच जदों के थॉट नहीं है, की है, सिर्फ एक वाचर है जो कि विटनेस कर रहे हैं, जो कि देख रहे हैं। वो वाचर कौन है? वो साड़ी आत्मा है, वो साड़ी बींग। सो इन दोज ग्लिम्प्स वी एक्सपीरियंस अवर बींग फ्री फ्रॉम थॉट्स। तो जितना जितना ये अभ्यास बढ़ाते जाओगे
उतना उतने वो गैप्स वधदे जाणगे। जदों गैप्स लंबे हुंदे जाणगे ते उस टाइम दे विच सिर्फ जो एक्सपीरियंस करन वाला या मंदिर मैं कौन बसाई, जिसलिए एक असी वंडर करदे हां कि इस मंदिर च कौन रहिंदा है, वो है आत्मा, वो है वाहिगुरु जी दी अंश, वो है वाहिगुरु जी दी जोत। सो देन वी विल एक्सपीरियंस द एक्सपीरियंसर, जो एक्सपीरियंस कर रहा है, जो थॉट्स नू देख रहा है, फिर असी उसनू पावांगे उत्थे मौजूद। उस दे नाल साडा ध्यान, साडी सुरती दा जिहड़ा कनैक्शन है, वो आत्मा दे नाल जुड़ना आरंभ हो जाएगा। सो टेक्निक है, अपने विचार असवारी कीजे। अते जदों ये अभ्यास कर रहे हो तो आप अचानक पाओ कि तुसी खो गए हो, तुहानू पता नहीं लगा किसी ना किसी थॉट दे फ्लो दे विच निकल गए, उदों फौरन वापस फिर वापस आओ। और वापस आके जदों ही कोई थॉट आवे, मन किते जान लगे, अपने मन नू आ पंक्ति बोल देनी केड़ी।

थॉट आन लगे उदे ही आखो मन किथे चलना है, किथे जान की जरूरत नहीं है, करे ही रहो अंदर ही रहो। कहां चलो मन, रहो घरे, मन रे थिर रहो, मत कत जाही जियो। उदो मन नू कमांड करो, मन नू आखो के मन रे थिर रहो, देयर इज नो नीड टू गो एनीवेयर, देयर इज नो नीड टू गो एनीवेयर, इत्थे रहो, बी प्रेजेंट। मन रे थिर रहो, मत कत जाही जियो, किते जान की जरूरत नहीं, मत जा किते, इत्थे रहे। फिर जो मन जान लगे उदो एना दो पंक्तियां नू इस्तेमाल करना, मन रे थिर रहो, मत कत जाही जियो। ए तुसी ताई कर सकोगे इफ यू आर वाचिंग द माइंड, जे तुसी इफ यू हैव क्लोज्ड आई ऑन द माइंड, जदों मन च कोई ख्याल आएगा फौरन लाइन रिपीट कर दो कि मन रे थिर रहो, टिके रहो। सो तुसी मन दे उते सवार हो गए हो। जितना जितना इस अभ्यास नू वधाओगे, जितना जितना इस अभ्यास नू वधाओगे, उतना उतना मन जो है अंडर कंट्रोल आंदा जाएगा, थॉट्स अंडर कंट्रोल आ जाएंगे, थॉट्स कट जाएंगे। थॉट्स का ही रौला है और थॉट्स की डिस्टर्बेंस है, जब वो हट जाएगी तो मन के अंदर एक शांति होएगी, एक टिकाव होएगा, एक खालीपन होएगा। उस दे विच आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता मन तो जो डीपर लैवल है आत्मा का, उस दियां ग्लिम्स आनी शुरू हो जाएगियां, उस दी दीदार होने शुरू हो जाएंगे। सो महाराज जी मन के मुतलक सानू इस तरह समझाते हैं, जपो तो एको नामा, नाम जपना है, पर नाम जपन दे वास्ते सब तो पहला भांडा तैयार करना है जो है बॉडी, और उस तो बाद समझ लो कि यह बहुत ही सूक्ष्म पढ़ाई है जिस दे वास्ते तुहाडी सुरती का टिकाओ बड़ा लाजमी है। पर अगर तुहाडे आले दुआले कोई शोर मचा रहा होवे, कोई डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा होवे, तो तुसी किस तरह पढ़ सकते हो? पढ़न दे वास्ते तुहानू क्वाइटनेस चाहिदी है, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिदी। पर ए रब्बी विद्या है, स्पिरिचुअल एजुकेशन है, ए अकाल पुरख वाहिगुरु नू मिलन दी तालीम है। और उत्थे मन ने अपना शोर मचाया होया है, मन दौड़ा फिरदा है, जिस तरह बच्चियां नू जदों रौला पांदे हन सानू कहना पैंदा ना टिक के बैठ जाओ, असीं बड़ा जरूरी काम करदे हां, इस तरह मन नू कहना पैंदा है कि ऐ मन बच्चे टिक के बैठ जा, इसनू टिकाना पैंदा है। महाराज जी ने मन नू बच्चा आख्या है। सो सारे साडे अपने अंदर असीं बच्चे ही हाँ, क्योंकि जे मन साडे अंदर है तो मन नू बच्चा आखदे हैं। काया नगर एक बालक वसया, काया नगर एक बालक वसया, खिन पल थिर ना रहाई। एक काया नगरी दे अंदर जड़ा मन रूपी बालक है ना, एक पल दे वास्ते भी टिक के नहीं बैंदा। जब ए एक पल दे वास्ते भी टिक के नहीं बैंदा, इतनी डिस्टर्बेंस क्रिएट करके रखता है अंदर, तो सुरती किमें टिक जाए, सुरती काल पुरख वाहिगुरु नू अनुभव किमें कर ले। उस तां बाणी दे विच अभ्यास दसदे हन कि मन रूपी बालक नू आखो बैठ के उस उत्ते ध्यान दे के रखो, उस दे उत्ते सवार हो जाओ, कि सारे दिन दे विच एक पल भी ऐसा ना होवे जदों कि तुहाडा तुहाडा ध्यान अपने मन वल ना होवे। नो मैटर व्हाट यू आर डूइंग, पर ए मन नू जो है इस नू एक पल दे वास्ते भी अपनी अखां तो अपने ध्यान तो ओले नहीं करना, इसकी आदत बनानी है। आदत बनाते हैं दो चार महीनों के छह महीनों यह अभ्यास बहुत पक जाता है, बहुत पक जाता है जो रेगुलरली इस नू करनगे। उदों ही आखना है कहां चलो मन, रहो करे, क्योंकि यू विल एक्सपीरियंस एक थॉट मेरे अंदर चल रहा है, एंड देयर इज नो नीड फॉर दिस थॉट। अपने मन नू तुसी कहोगे भी क्यों, की गल है, उथे तुसी मन की जो एनर्जी है उस दे लिए ऑब्सटैकल खड़ा कर दिता। यू हैव बिकम द ऑब्सटैकल फॉर द माइंड, बिकॉज यू आर नाउ वाचिंग इट एंड ब्रेकिंग इट। तुहाडा देखना ही माइंड नू जो है वह खत्म करना शुरू कर देगा, सीज होना शुरू कर देगा, अते उस दे अंदर एक थॉट तो बाद कितनी कितनी देर तक दूसरा थॉट नहीं आएगा। जिन्होंने यह अभ्यास किया उन्होंने पता है, एक थॉट नू ओ वाच कर रहे हैं और उसनू उत्थे ही उन्होंने खत्म कर दिता है, देन
उस तो बाद जो दूसरा थॉट है कितनी देर तक दूसरा थॉट नहीं आएगा, वो टोटल साइलेंस का टाइम होता है अंदर, और उस साइलेंस दे विच स्टिल जो एक्सपीरियंस करने वाली जो साड़ी कॉन्शियसनेस है फिर असी उसनु एक्सपीरियंस करते हैं. सो देन द एक्सपीरियंसर इज द वन विच इज एक्सपीरियंस्ड. सो दूसरा अभ्यास है मंद, और तीसरा अभ्यास है गुरु बाबा जी आखते हैं सुरती का, क्योंकि अगर दो इंसान गलबात कर रहे हैं एक दी सुरत उत्थे नहीं है, ध्यान उत्थे नहीं है, अटेंशन उत्थे नहीं है, तो एक बंदा कुछ कही जाता है पर एक बंदा सुनदा सुनदा भी उसनु कुछ नहीं पता चलता. बाद अगर उसनु दूसरा इंसान पूछता है कि मैं की क्या, तो वो बड़ा एम्बेरेस हुंदा है कि मैंने तो पता ही नहीं चलिया कि की क्या है, क्योंकि सुरति उत्थे प्रेजेंट नहीं सी, ध्यान उत्थे प्रेजेंट नहीं सी, इस करके वह गल कही हुई भी असी रजिस्टर नहीं की. कई दफा असी सामने कुछ देखते हैं पर साडा ध्यान कितने हुंदा होर है, फिर भी असी देखने दे बावजूद भी चीज देखी नहीं हुंदी क्योंकि ध्यान कितने होर सी. सो तीसरी साधना है ध्यान. इस शब्द दे विच महाराज जी ने पहली ही लाइन च यह तीन गल्लां आख दित्तियां कि नाम जपण दे वास्ते जो मैथड है, सब तो पहला अपनी बॉडी नूं साधो, शेप अप करो, इस दी हैबिट्स नूं ठीक करो, इस नूं मास्टर करो, इस दे उत्ते अपना कंट्रोल अचीव करो, सेंसेस दे प्लेजर जो सानू ड्रैग करदे हन उहनां उत्ते अपना कंट्रोल करो. दूसरा है माइंड, जिस दी मैं आप जी दी सेवा च अर्ज कर चुका हां, उस अभ्यास नूं करो, अपने विचारां नूं अलग बैठ के सिर्फ देखो. ए पहली दफा ए फिनोमिनन होएगा कि यू विल बी सेपरेट फ्रॉम योर थॉट्स जस्ट वाचिंग देम, अते जो थॉट्स हन ओ ताही आ सकते हैं अगर उन्होंने को वाच ना करे. थॉट्स कैन ओनली अकर इन योर एबसेंस, अदरवाइज दे कैन नॉट. इफ यू आर प्रेजेंट वाचिंग देन देर इज नो रूम फॉर द थॉट बिकॉज द प्लेस इज ऑलरेडी बींग ऑक्यूपाइड बाई यू. सो तीसरी प्रैक्टिस है सुरती दी, क्योंकि अकाल पुरख वाहिगुरु साडे अंदर भी है साडे बाहर भी है, पर वो नजर क्यों नहीं आता, नजर क्यों नहीं आता, साडी सुरती च नहीं आता. तो महाराज जी आखते हैं अपने जीवन दे विच एक नवी चीज पैदा करो, नवी चीज ग्रो करो जेड़ी एक नवे किस्म की सुरती है, नवे किस्म की सुरती. उस दे लई सिंपल लफ्जा दे विच मैं आखा, फिर मैं बाणी की लाइन भी आखांगा. महाराज जी आखते हैं अपनी सुरती की सुरती रखनी शुरू कर दो. सोचो पहला इसनु दास की अर्ज कर रहा, जिस तरह साडा बच्चा बाहर खेड रहा है ना, असी उसकी सुरत रखते हैं कि कित्थे है, किधर नू जा रहा है, किधर नू खेड रहा है. एक है साडी सुरती, कहिंदे हन सुरती दी सुरती रखो. बड़ा सटल अभ्यास है, हर वेले सुरती नू देखो कि सुरती कित्थे है. तो तुसी असी की अचीव करांगे, एक नवी सुरती जो सुरती नू देखदी है. पहला साड़ी सुरती नू को देखण वाला नहीं, कदे किते है, कदे किते है, कदे किते है, कदे किते है. नाउ एक होर सुरती डिवेलप हो गई है जड़ी सुरती नू देखदी है, उस दे लई ए टेक्निक गुरु बाबा नानक देव जी महाराज दी है. कहिंदी सुर कहिंदे हन सुरती सुरत रलाई है एक, गुरु नानक साहब जी दे वचन हन. कहिंदे अपनी सुरत दे उत्ते सुरत नू रला दियो, सुरत नू रख दियो, सुरती सुरत रलाई है एत, अपनी सुरत दे उत्ते सुरत रखो. ए अभ्यास हर वेले करो, यानी अपने ध्यान दा ध्यान रखो कि ध्यान कित्थे है.
क्योंकि जितनी देर तक ध्यान अते सुरती बहुत बारीक बहुत मान्यूटली अपनी सुरती नू अपने ध्यान नू नहीं देख सकते उतनी देर तक वो आत्मा जिही सूक्ष्म चीज नू नहीं देख सकते होनी चाहिए। उस दे वास्ते ए अभ्यास है। महाराज जी ने अपनी बाणी दे विच सानू जो फरमाया है आप जी की सेवा च मैं दसदा हां कि इसे ही शब्द दे विच गुरु साहब ने ए तिन्ने चीजां आखियां। नंबर एक, भांडा धोए बैस धूप देवो, अपने इस भांडे नू शुद्ध करो, तौ दूधे को जावो। जे भांडा मैला है शुद्ध नहीं है उस दुध पाया कि खराब नहीं हो जाएगा? फिर कहिंदे हन दूध करम फुन सुरत समायन होए निराश जमावो। दूध कर्म कहिंदे जिहड़े तुहाडे कर्म हन ना, कर्म की हन? बोलना, यह भी तो कर्म ही है ना। सारी इंट्रैक्शन जितनी भी है साड़ी ह्यूमन लाइफ दे विच ओ साड़े कर्म हन। कहिंदे ओ दुध वर्गे सच्चे सुच्चे पवित्र होने चाहिए हन, दुध वर्गे साफ, दुध वर्गे निर्मल कर्म हो। झूठ ना बोलिया जाए, कौड़ा ना बोलिया जाए, फिक्का ना बोलिया जाए, होमेच ना बोलिया जाए, किसी का दिल ना दुखाया जाए, दुख ना दे किसे जी पत स्यों कर जावो। कहिंदे किसे नू भी कदे तो तो दुख ना पहुंचे तां तुसी पत दे नाल वाहिगुरु दे घर च जा सकदे हो। तो अगर कोई शख्स हर्ट हुंदा है ते ओ निर्मल कर्म नहीं है, दुध वर्गे कर्म नहीं है। कहिंदे तुहाडे कर्म दुध वर्गे होने चाहिए। सो दुध की है? दुध वर्गे कर्म। भांडा की है? ए शरीर। ए साफ सुथरा होवे फिर दुध कर्म जो हन दुध वर्गे ओ इस दे विच दुध पाया होवे फिर मक्खन कढ़न दे वास्ते असीं उस दुध नू जाग लगाने हैं। उस दुध नू जाग लगाने ना दही पाके। कहिंदे उस दुध नू जाग किवें लगाना है? ताकि दही बने। शुभ कर्म हो गया दुध, शरीर हो गया भांडा, हुन जाग लगाना है। कहिंदे सुरती दा जाग लगाओ, सुरती दा जाग लगाओ जिहड़ी इस दुध नू तब्दील करके उस फॉर्म च कर देगी जिथों मक्खन ने निकलना है। रब है मक्खन और रब मक्खन दे वास्ते महाराज ने यह सिनेरियो साडे सामने रखा है, यह सिमली दिती है। कहिंदे सुरत समायण, समायण का मतलब हुंदा है जाग लगाना। भांडा तुहे बैस धूप देवो तो दूधे को जावो, दूध कर्म फुन सुरत समायण। कहिंदे दुध तुहाडे पास आ गया, शुभ कर्म वो है दुध। फुन सुरत समायण, सुरती की आदत, सुरती का अभ्यास एक ऐसा जाग है जिहड़ा तुसी लगा दो। हर वेले अपनी सुरती भी सुरत रखो कि सुरती की कर रही है, सुरती की देख रही है, सुरती की सोच रही है। सुरती भी सुरत रखो, ध्यान दा ध्यान रखो, ऐ दो गल्लां याद रखो। सुरती भी सुरत रखो, ऐ किवें होएगा? हुण लंगर छकदे हो ते लंगर असीं हत्थां नाल छक रहे हां, दंदां नाल चबा रहे हां, पर सुरती नाल की कर रहे हैं? सुरती कित्थे है? नाल दी नाल भी कम कर लो। लंगर मैं छक रहे हां, सुरती कित्थे है? ते जे सुरती उत्थे लंगर नहीं छक रही तो सुरती नू वापस ले आओ। कि सुरती भी उत्थे ही प्रेजेंट होवे जिथे तुसी बैठे हो, जिथे लंगर छक रहे हो, ताकि तुहाडी सुरती उस टोटल जो एक्सपीरियंस नू एक्सपीरियंस करे कि तुसी बुरकी तोड़ रहे हो, उसनू मूंह च पा रहे हो, उसनू चबा रहे हो। सुरती शुड बी पार्ट ऑफ एवरीथिंग, बट व्हेन वी डू थिंग्स वी आर एबसेंट। असी खाना खा रहे हुन्ने हां, सुरती करके असी किते होर हुन्ने हां, प्रेजेंट नहीं हुन्ने। सुरती दा अभ्यास इस तरह करना है, हर चीज दे विच सुरत नू उत्थे प्रेजेंट रखना है, सुरती दे उत्ते सुरत रखनी है। इशनान कर रहे हो तो सुरती नू देखना है कि सुरत कित्थे है, इशनान ही कर रही है जां कुछ और कर रही है। सैर कर रहे हो उदो सुरती नू देखना है कि सुरती सैर ही कर रही है जां कितें होर है। सैर असी सिंगापुर च कर रहे होइए तो सुरती करके इंडिया च तुरे फिरते होइए, सुरती भी उत्थे ही होवे। यह है सुरती दा अभ्यास। यानी कुछ भी करना है उस दे विच
ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸੁਰਤੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸੁਰਤ ਸਮਾਇਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਜਾਗ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਕਰਨ ਫਿਰ ਸੁਰਤ ਸਮਾਇਣ ਹੋਏ ਨਿਰਾਸ ਜਮਾਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਮਨ ਇੰਟੀ ਹਾਥ ਕਰੋ ਫੁਨ ਨੇਤਰੋ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤਬ ਮਥੀਏ ਇਨ ਬਿਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਵੋ। ਇਹ ਮਨ ਇੰਟੀ ਹਾਥ ਕਰੋ। ਇੰਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਮਧਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਨੇਤਰਾ। ਉਸ ਰੱਸੀ ਦੇ ਦੋਨੇ ਐਂਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਗੁੱਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਇੰਟੀਆਂ ਪਕੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਰੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੇਤਰਾ। ਇਹ ਮਨ ਇੰਟੀ ਹਾਥ ਕਰੋ ਫੁਨ ਨੇਤਰੋ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਨੇਤਰਾ ਇਹ ਹੈ, ਰੱਸੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਭਾਵ ਮਨ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਐਬਸੈਂਟ ਮਾਈਂਡਡ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤਬ ਮਥੀਏ ਇਨ ਵਿਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਵੋ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਆਖਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫੁੱਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਆਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਬੋਲ ਕੇ। ਉਸਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਉਸਦਾ ਪੇਸ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਮਾਲਾ ਲੈ ਲਓ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਛੋਟੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਦਾ ਜੋ ਪੇਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਾਇੰਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਏ। ਹਰ ਦਫਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਅਲਰਟਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ, ਜੋਤ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੌਣ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਹੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਸ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੇਸੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਪ ਜੋ ਹੈ, ਅਗਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ 1 ਘੰਟਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਭਰ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਭਿਆਸ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਕ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਚ, ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਕੀ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਵੀ ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡੈਡੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ, ਨਾਨਕ ਕੇ ਕਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਜਪਾਂਗੇ? ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ

0: वर्गे कर्म करने हन, निर्मल पवित्र इतने अच्छे कर्म करने हन कि उन्हें कंपेयर किया जा सके दुध वर्ग, और फिर उस दुध नु सुरती का जाग लगाना है, सुरती का जाग लगाना है, सुरती का अभ्यास करना है। इशनान करने वेले सुरती कितने है, बिस्तरे उत्ते लेटे पे हो सुरती कितने है, खाना खा रहे हो सुरती कितने है, कार चला रहे हो सुरती कितने है, सैर कर रहे हो सुरती कितने है। जिसने सुरती का अभ्यास करना शुरू करता उसने इसनू कंटीन्यूसली हर वक्त करना है, उसके कोई फिर जो है वो टाइम अजिहा नहीं कि हूं ना किया जाए। दिस इज ऑन गोइंग थिंग, सुरती का अभ्यास हर वेले करना है। सुरती का अभ्यास करद्या करद्या करद्या करद्या सुरती ने इतनी शार्प हो जाना है, इतनी कंट्रोल्ड हो जाना है, इतनी माइन्यूटली देख सकन दे उसने काबिल हो जाना है कि वही सुरती दे विच एक दिन आत्मा ने आना शुरू हो जाना है। उससे ही सुरती दे विच वो वाहिगुरु जी की जो जोत है उसने आना शुरू हो जाना है। उन ज्यादा समा नहीं है, इस करके कीर्तन की जो विचारां दी लड़ी आज इत्थे संपूर्ण हुंदी है। जो टॉपिक आरंभ होया सी उसनु अज इत्थे महाराज जी की बख्शिश दे नाल असी कंप्लीट कर रहे हैं, और इन्हां विचारां नु आप अपने अभ्यास दे विच लियाओ, सुरती की साधना करो, और रोजाना अपने अपने जीवन दे विच कोई टाइम जरूर कमिट कर लो। सवेरे सूट करता है जा रात नु सूटेबल है जा दोपहरे, पर एक टाइम ऐसा होवे जो तुहाडा सिर्फ अपने वास्ते होवे, उस वक्त दे विच रोजाना वाहिगुरु शब्द का अभ्यास जो है वो नितनेम दे नाल करना है, और बहुत ध्यान दे नाल जागरूकता दे नाल करना है, और उस दे नाल नाल अगर हो सके ते गुरु बाबा जी की बाणी का अभ्यास जितना बढ़ सके गुरु ग्रंथ साहब महाराज का एक पेज रोजाना पढ़िया जाए, जे गुरु ग्रंथ साहब नहीं हन ते गुटकियां आप तो पढ़ लिया जाए। तो इस तरह अपने मन नू हर वक्त किसी दायरे दे विच रखना है, तो इस दायरे दे विच रख के जो अभ्यास करता जाएगा उसका अंदर भी शुद्ध हुंदा जाएगा, शरीर भी उसका मंदिर बन जाएगा, शरीर उसका रब की कामणी बन जाएगा, शरीर उसका सरोवर बन जाएगा, और उस सरोवर दे विच आत्मिक फुल खिलणगे, और उसकी जो जीवन की यात्रा सफल हो जाएगी। फूल चुक दी खेमा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
1: यू आर लिसनिंग टू सीकनेट रेडियो, ब्रॉडकास्टिंग
0: वाहेगुरु जी का खालसा,
1: वाहेगुरु जी की फतेह।